बड़ा कीमती होता है वक्त इश्क मोहब्बत और प्यार का। कभी कभी आता है ऐसा मौसम इजहार का।

जिक्र तुम्हारा आ ही जाता है हमारी बातों में। हर शख्स जो हमसे मिलता है यही कहता है, बस तुम्हारा ही चेहरा नजर आता है हमारी आंखों में।

का मंदिर है ये, इंसाफ का मंदिर है ये, भगवान का घर है हमारे सभी सुनने वालों की सेवा में। मेरे तरफ से हर एक को सादर नमस्कार और अदा बरसों। ये है ब्रॉडकास्टिंग स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन बस पेश किया जा रहा है। जो बीमार या लाचार है भगवान से तंदुरुस्ती के लिए प्रार्थना या तो अल्लाह से दुआ किया जा रहा है उन सभी की दुख और गमी हमेशा के लिए दूर करने के लिए। जिन लोगों के घर पर खुशियां ही खुशियां है, सारी सालगिरह विवाह संस्कार जन्मदिन या तो प्यारा प्यारा बच्चा पैदा हुआ है, तहेदिल से बधाई और मुबारकबाद पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से। सुनने वालों, जिस तरह से मैंने आपको खबर किया आज सोमवार का दिन है, आप सभी सुनने वालों को एक शुभ सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए 0325656560 और स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322666611। मैं हूं आपका खिदमत गुजार अबीन। यहां से प्रोग्राम भजन यात्रा आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। भजन यात्रा प्रोग्राम का पहला भजन हमेशा होता है हरि हरन की आवाज में, सुबह सुबह लो शिव का नाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए और सभी भक्त प्राणियों के लिए।

शिव का नाम हरि हरन के आवास में ये सुंदर और सुंदर भजन आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हर सुबह आप सभी सुनने वालों की सेवा में भजन यात्रा प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक सुबह 7 बजे से लेकर के और शनिवार और रविवार सुबह 8 बजे से भजन यात्रा का प्रोग्राम आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हरि हरन और अनुराधा पोटवल जी के आवास में और एल्बम का नाम है 4 धाम पेश किया जा रहा है हमारी सभी सुनने वालों के लिए सभी भक्त प्राणियों के लिए।

पास में ये सुंदर सा भजन आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। सुनने वालों, रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl और उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन, टैबलेट, आईपैड के जरिए, कंप्यूटर के जरिए भी प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं रेडियो SBS का। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में सुंदर भजन पेश किया जा रहा है और अब की बार

मोहम्मद रफी की आवाज में ये सुंदर और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में सेन रामबरन की ओर हम आपको ले चलते हैं। सुंदर शिव जी का भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है।

और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। चले प्रोग्राम में आपकी बार सुंदर भजन जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना। हम आपको ले चलेंगे आपकी बार पंडित गैनेन्द्र शर्मा जी की आवाज में एक सुंदर भजन जो पेश किया जा रहा है।

पंडित गणेन्द्र शर्मा जी की आवास में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गई है। सोमवार का दिन है, भजन यात्रा का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है, वंदना।

0: और सुंदर भजन बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। अगला भजन जो प्रोग्राम में पेश होगा सुरेश वटकर की आवाज में।
1: भगवान का हर भक्त अपने प्रभु को प्रसन्न करने के लिए भगवान रुद्र को सर्वाधिक प्रिय उनकी कांवर चढ़ाता है और मोक्ष को प्राप्त होता है।

रेडियो SBS के जरिए जरूर और जरूर सुनते ही रहना। आरती भजन पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से, हमारे तरफ से, हमारा पूरा परिवार के तरफ से, आप सभी सुनने वालों के लिए, सभी भक्त प्राणियों के लिए, उन सभी के लिए जो बीमार या लाचार है, सभी दुखित प्राणियों के लिए, सभी बच्चों के लिए, सभी सुनने वालों जो आज के दिन नौकरी करने वाले हैं, काम करने वाले हैं, सभी को शुभ दिन पेश किया जा रहा है। और हमारे सभी सुनने वालों जो दुनिया के कोने कोने में रेडियो SBS का प्रोग्राम को सुनते हैं, उनके लिए और उनके पूरा परिवार के लिए, हर एक के लिए शुभ सुबह, शुभ दिन के साथ ये सुंदर आरती भजन पेश किया जा रहा है।

0: सुंदर सुंदर आरती भजन बस प्रोग्राम में पेश की गई अमिता बच्चन की आवाज में अभी आपने सुना। सुनने वालों, यहां तक भजन यात्रा प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई रेडियो SBS के जरिए। आशा उम्मीद है कि आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से आप सभी सुनने वालों को, सभी भक्त प्राणियों को एक शुभ दिन, शुभ सुबह बस पेश किया जा रहा है रेडियो SBS का पूरा और पूरा टीम के तरफ से।
1: Goedemorgen, je luistert naar Radio SBS. En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
0: Supermarkt Toko de Waag in Utrecht. Bij Supermarkt Toko de Waag elke dag volop nieuwe aanbiedingen. Zoals op verse Surinaamse groenten, verse vis. Ook hier verkrijgbaar. Alle kruiden, blikproducten, alle soorten rijst, mithai en alle puja saman, kleine en grote murti. Supermarkt.

श्रेया जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गई। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है गाना आपने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में अबकी बार बैनी दयाल एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

Benny Dayal en Shreya जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए गाना प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी सुनने वालों की सेवा में आशिकिंग और साथियों की आवाज में। गाना का बोल है बारिश

और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322-66-66-11। पापोन प्रोग्राम में और पापोन की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

हमारी अधूरी कहानी है। फिल्म का नाम पापोन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सभी सुनने वालों को वेलकम और रेडियो SBS का प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। कुमार सानू एनाल का प्रोग्राम में होगा।

सानु और अलका की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसरो उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। कुमार सानू एनालका।

आवास में ये फिल्म एक रिश्ता, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में कुछ खूबसूरत नखमे बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है हेमा सर डी साई एन शंकर महादेवन की आवाज में। ये गाना बस प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

और शंकर महादेवन की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना भी आपने सुना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई। सुन वालों, हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0302-65-65-60। इसी डार के नंबर पर अपना हर एक इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं 24 पर दाग, यानी कि 24 घंटा लगातार ये तार की नंबर आप सभी के लिए बस होता है। या तो ईमेल कीजिए रेडियो SBS का वेबसाइट की जरिए radio.sbs.nl। अपना मोबाइल टेलीफोन की जरिए भी आप ईमेल कर सकते हैं, जरूर आप जाइए radio.sbs.nl वेबसाइट पर। तो चले प्रोग्राम में अब की बार हरिहरन एंड चित्रा की आवाज में एक गाना बस पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

सुबह शुभ दिन पेश किया जा रहा है, जहां जहां पर भी आप सभी रेडियो SBS का ये प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन, और आज का प्रोग्राम जरूर है और जरूर सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी ये प्रोग्राम को सुनते हैं। मैं हूं आपका खिदमतगुजार रबीन। वेबसाइट होता है radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए हमारा प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए, और उसी वेबसाइट के जरिए भी आप मेल कर सकते हैं और radio.sbs का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। सभी सुनने वालों जो radio.sbs का ऐप पर ऐप किया है, गुड मॉर्निंग कहा है सभी को, अनहेलो खुद मोर्ख गुड मॉर्निंग कहा जा रहा है। और आपको हम ले चलते हैं पहला गाना की ओर, लेकिन गाना पेश करने से पहले आप सभी को स्वागत किया जा रहा है शुभ सुबह के साथ, गर्मा गर्म कॉफी या चाय के साथ। हम आपको ले चलेंगे फिल्म का नाम काला पत्थर, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और उषा मंगेशकर की आवाज में।

आशा जी की आवाज में ये काफी प्यार भरी गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरा उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। रेडियो SBS के जरिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में जो पेश की गई है लाइव के जरिए प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। किशोर और आशा जी के बाद मोहम्मद रफी प्रोग्राम में।

हमारा फेवरेट एक्टर धर्मेंद्र का एक्टिंग किया हुआ फिल्म कब क्यों और कहां, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। चलिए धर्मेंद्र का एक और मूवी की ओर, फिल्म की ओर, तुम हंसी मैं जवान। मरहूम मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में।

मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। चले प्रोग्राम में तलत महमूद और लता जी की ओर। और अब की बार हम आपको ले चलते हैं फिल्म का नाम रूप की रानी चोरों का राजा। द मैन विद द गोल्डन वॉइस तलत महमूद एंड द नाइटिंगेल ऑफ इंडिया लता मंगेशकर। तो रूप की रानी मैं चोरों का

तलत महमूद और लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मोहम्मद रफी एंड लता मंगेशकर, हम आपको ले चलते हैं अपनी बार फिल्म दुलारी की ओर। मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में ये गाना बस पेश किया जा रहा है कि मिल मिल के गाएंगे। काफी पुरानी फिल्म है, फिल्म दुलारी। उन्नीस सौ 1949 का फिल्म, 1949।

में फिल्म दुलारी का गीत पेश की गई है। सुनने वालों चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं यशुदास की ओर। हमारी बहुत सी सुनने वालों होते हैं जो यशुदास की गाने बहुत पसंद करते हैं।

यसुदास के आवास में पेश की गए चार दिन की जिंदगी है। फिल्म का नाम एक बार कहो, 1980 का फिल्म, 1980 का फिल्म का गीत यसुदास की आवाज में बस पेश की गई है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में। किशोर कुमार

लता मंगेशकर की आवाज में फिल्म दुल्हा दुल्हन, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। लता के बाद हम आपको ले चलेंगे मरहूम मोहम्मद रफी की ओर। एक नारी दो रूप फिल्म का नाम होगा। मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में अब की बार

गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। एक गाना आज की प्रोग्राम में द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की आवाज में पेश किया जा रहा है। संसार है एक नदिया, हम आपको ले चलते हैं द हार्ट ऑफ द मिलियंस द माइटी मुकेश की ओर।

बिलियंस द माइटी मुकीस की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकीस के बाद हम आपको आज की प्रोग्राम में फिर से ले चलते हैं लता मंगेशकर की ओर। एक काफी पुरानी फिल्म का गीत अब की बार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। लता मंगेशकर की आवाज में जरूर आप सुनते ही रहना।

और रेडियो SBS के जरिए लता मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम भी पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में एक और गाना लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है, साथ में होगा महेंद्र कपूर।

रेडियो SBS के जरिए। ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई महेंद्र कपूर और लता जी की आवाज में अभी आपने सुना ये खास गाना। चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर से। रामचंद्र का संगीत पर एक गाना पेश किया जा रहा है, आपका चेहरा माशाल्लाह। गाना का बोल है आपका चेहरा माशाल्लाह, मोहम्मद रफी एनाशा।

मुखर्जी की आवाज में ये गाना उस प्रोग्राम में पेश की गई। आप सब ये सुनने वालों की सेवा में 10 बजकर प्रोग्राम में 10 मिनट व्यतीत हो चुका है। पुरानी फिल्मी संगीतों का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में ये प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे अफसोस के साथ मृत्यु समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी। ठीक 12 का वक्त प्रोग्राम में 12 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। किशोर कुमार एक बार फिर से प्रोग्राम में

किशोर कुमार, किशोर कुमार की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0302266611। इसी डार के नंबर पर रेडियो SBS का ऐप पर भी आप ऐप कर सकते हैं। मोहम्मद रफी।

असरों मीठे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। जानवर फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में मरहूम मोहम्मद रफी की आवाज में। सोमवार का दिन 17 तारीख अगस्त का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। स्टूडियो की ओर बहुत से सुनने वालों बस रेडियो SBS का ऐप पर ऐप कर रहे हैं। बहुत से तार बस अंदर आते हैं। मोहम्मद रफी एक बार फिर से प्रोग्राम में।

आई मिलन की बेला, उसी फिल्म का गाना। बस लता जी की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश की गई देनहाग शहर की रहने वाली सिंथिया सुक्कू अपने प्यारा प्यारा हैंग के लिए ये गाना आज की प्रोग्राम में प्यार मोहब्बत के साथ मांग किया। शुभ दिन पेश किया जा रहा है और रेडियो SBS का प्रोग्राम जो है जरूर सुनते ही रहना। सुनने वालों, आपको मालूम होना चाहिए कि कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का लाइव कॉन्सर्ट होने वाले हैं और वो भी 6 तारीख सितंबर यानी कि रविवार 6 तारीख सितंबर आफास लाइव थिएटर आम्स्टरडम शहर के अंदर में। टिकट इन दिनों काफ़ी जोर तोर से बिक रहा है, कुछ सप्ताह बाकी रह गया है, कुछ दिनों बस बाकी रह गया है, तो इन दिनों लोग अपना टिकट जल्द से जल्द खरीद रहे हैं, तो आप भी अपना टिकट जल्द से जल्द जाकर खरीदिए istreptickets.com वेबसाइट पर। कुमार सानू और अनुराधा पौडवाल का लाइव कॉन्सर्ट जोंदक 6 सितंबर पेश होगा और वो भी आफास लाइव थिएटर आम्स्टरडम में। माइटी मुकेश, वो तेरे प्यार का गम।

0: 1337 का खास फिल्म का गीत माइटी मुकेश की आवाज में आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए किशोर कुमार
1: जब जब देखूं
0: और लता जी की आवाज में आपकी बार फिल्म टक्कर। काफी दिनों के बाद इस फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है, फिल्म टक्कर किशोर एंड लता।
1: आती है उड़ के एक चिंगारी

कि आवाज में फिल्म टक्कर का गीत बस पेश की गई है। सर 10:00 प्रोग्राम में 7 मिनट व्यतीत हो चुका है। सुनने वालों हर एक काम काज के लिए रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560 और हमेशा हर एक इन्फॉर्मेशन आप मेल द्वारा और रेडियो SBS का ऐप के जरिए भी ले सकते हैं। मुकेश एन सुमन कल्याणपुर, हम आपको ले चलते हैं फिल्म पहचान की ओर।

रेडियो SBS के जरिए ये गाना बस पेश किए गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। मुकेश और सुमन कल्याणपुर की आवाज में असर उम्मीद है गाना सुनकर और काफी पसंद किया रेडियो SBS के जरिए जो पेश की गए। एक गाना आज के प्रोग्राम में मोहम्मद रफी और लता जी की आवाज में पेश किया जा रहा है। अदालत फिल्म का गीत आप सुनते ही रहना। एक सुनने वालों बस अभी अभी तार किया और मुझसे गुजारिश किया, बड़ी प्यार के साथ गुजारिश किया।

रेडियो SBS के जरिए मोहम्मद रफी और लता जे की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है। मैं हूं आपका खिदमत गुजार रबीन और प्रोग्राम जरूर सुनते ही रहना। मोहम्मद रफी

लता जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों एक बार फिर से आपको खबर किया जा रहा है ठीक 12 बजे मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जाएगी ठीक 12 बजे प्रोग्राम में मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश होगा। पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम का एक आखिरी गाना पेश किया जा रहा है। कल मंगलवार है, कल सुबह 9 बजे से फिर पुरानी फिल्में संगीतों का प्रोग्राम आप जरूर है और जरूर सुनते ही रहना। इस गाना के बाद प्रोग्राम में खबरें होगा और खबरें के बाद तुरंत हम आपसे फिर मिलते हैं। राम बलराम फिल्म का नाम किशोर एनाशा यार की खबर मिल गई गाना का बोल है।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा पौडवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

0: प्रेयर की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गए प्यार में कभी कभी, प्यार में कभी कभी फिल्म का नाम, महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना भी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आज का प्रोग्राम जरूर आप सुनते ही रहना, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम सुनते हैं। महालक्ष्मी आयर के बाद कुमार सानू प्रोग्राम में।
1: प्यार किया है?
2: हाँ, है एक लड़की बिल्कुल तुम्हारे जैसे, बहुत सुंदर, बहुत भोली और थोड़ी पागल भी, लेकिन मेरे प्यार की खबर सिर्फ मेरे दिल को है।
1: उसे बताया क्यों नहीं?
2: यह प्यार भी अजीब चीज है संजना, जहां इकरार की पूरी उम्मीद हो वहां भी दिल कहने से डरता है, और मुझे तो इनकार का पूरा यकीन है। तुम ही कहो, उसे कैसे बताऊं, वो किसी और को चाहती है।

सानू जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस आज के प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अब की बार हम आपको ले चलेंगे अभिजीत और अलका जी की ओर। गाना जो पेश किया जा रहा है रेडियो एसबीएस की जरिए

प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा भी आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और आज का प्रोग्राम सुनने वालों आप जरूर और जरूर सुनते ही रहना। समीर कुमार एंड अलका याग्निक प्रोग्राम में

0: रेडियो SBS की सीरीज अभी आपने सुना है, फिल्म का नाम कसम से कसम से। रेडियो SBS की सीरीज, ये गाना बस आज के ये प्रोग्राम में पेश
1: किया है।
0: चलिए प्रोग्राम में कुमार सानू और महालक्ष्मी आयर की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

गाना बस आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। कुमार सानू और महालक्ष्मी आर्य के बाद हम आपको ले चलते हैं अरिजीत सिंह की ओर।

आवाज में यादव प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेस्ट बीएस के जरिए अभी आपने सुना अरिजीत सिंह के आवाज में ये गाना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गए सभी सुनने वालों की सेवा में। श्रेया घोषाल एंड के प्रोग्राम में

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे हैं। दोनदाह 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, 1 पोतीन और 2 पोता जेडा, जेनाइडो, रोशन और नाइलन के आजाम। हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। आरती के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। वोसदाग 19 अगस्त सावंस फन 6 तोत 7 उटवाट सेंट्रम डालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में। आरती फ्रैडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक इन द ग्रोते औला फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट शहर में दा करिया किया जाए। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूटी पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुनने वालों, यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंदाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंद्रदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सूरीनाम पारामारिबो अबेनी स्ट्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक ग्रोते औला में फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में दा करिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, 3 बेटा और 1 बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, 3 पतु और 1 दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर, 1 पोटीन और 2 पोता जेडा, जेनाइरो, रोशन और नाइलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

Brehesbediwaar 13 tarich August, donderdag 13 augustus. Behetterzaal 72, zaal Kiajumbe. Houten, Schechkamp, nummer 5, Karehnevala. Chandardat Mahadev Misirke, Mrityu, Hugeyehe. Jo Suriname, Paramaribo, Abenistraat, nummer 10, Kenivasita. Arte, vrijdag 21 augustus, smiddags vanaf 4 uur, Crematorium Daalwijk, Grote Aula. Florida Dreef, nummer Saat, Utrecht, overvecht mee. Da kriya kia jaega. Patni, Elfi, apne pati. Tien beta, aur ek beti. Kishan, Vikas, Amres, aur Karishma, apne pita. Tien patu, aur ek damat. Miranda, Lindsay, Sakita, aur Ram, apne sasur. Ek potin, aur do pota. Jada, Janairo, Roshan, aur Nailan, apne aja, ko bahut yaad karte hue. और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। इसी तरह से रेडियो SBS की सरिये बस प्रोग्राम में एक मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश की

14 मिनट वेटेड हो चुका है 12 बजकर। सुन वालो, रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है, और साथ ही साथ एक सुख समाचार आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश की गए है। ये मृत्यु समाचार और शोक समाचार जो है आज शाम में ठीक 6 बजे फिर से प्रोग्राम में पुकारा जाएगी रेडियो SBS के जरिए। हमारी सभी सुनने वालों को शुभ दोपहर, जहां जहां पर भी आप सभी प्रोग्राम को सुनते हैं रेडियो SBS का, जरूर और जरूर प्रोग्राम को सुनते ही रहना। चले प्रोग्राम में गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं, जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS की जरिए, जरूर और जरूर सुनते ही रहना।

प्रोग्राम में भी इसके लिए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में रेडियो वेव्स में इसका प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और इस प्रोग्राम को आप जरूर सुनते ही रहना। सूरज जगन प्रोग्राम में जाना कबूल इतनी सी बात है।

जगन की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई, इतनी सी बात है गाना का बोल बस प्रोग्राम में जो पेश की गई। चले प्रोग्राम में उदित नारायण और साधना सरगम की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

अगन, ये बात फिल्म प्रेम का गेम उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई जावेद अली की आवाज में। अभी आपने सुना ये खूबसूरत गाना जो आज की प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अबकी बार ये गाना की ओर हम आपको ले चलते हैं जो आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है। शान की आवाज में ये गाना आप सुनते ही रहना।

Udit Narain और पूर्णिमा की आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 0322266611। प्यार कोई खेल नहीं है, उसी फिल्म का ये गाना अब की बार पेश किया जा रहा है।

में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अभिजीत की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

अरिजीत सिंह एंड श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया है, लागी ना छूते। जेंटलमैन फिल्म का नाम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए एक बार फिर से अरिजीत सिंह की ओर हम आपको ले चलते हैं।

अरिजीत सिंह, अरिजीत सिंह की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आसर उम्मीद है कि गाना आप सभी ने सुना और बेहद पसंद किया है।

अरिजीत सिंह के बाद चले प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं श्रेया जी की ओर। श्रेया जी की आवाज में अबकी बार ये सॉन्ग, ये गाना आप सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है।

प्रोग्राम में पेश की गई श्रेया जी की आवाज में अभी आपने सुना। चलिए अब की बार आज के प्रोग्राम में फिल्म आजा न चले सोनू निगम और श्रेया जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

बड़ी ही खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में अभिजीत और खास तौर पर अनुराधा पोटवाल जी की आवाज में अभी आपने सुना। एक गाना उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में पेश किया जा रहा है।

कृष्णमूर्ति और आदित्य नारायण की आवाज में खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी सुनने वालों की सेवा में। अलका एन कुमार सानू आज के प्रोग्राम में सपने साजन की फिल्म का नाम

ठीक है, सुनवलो रेडियो SBS का वेबसाइट radio.sbs.nl, उसी वेबसाइट के जरिए अपना मोबाइल टेलीफोन टैबलेट आईपैड कंप्यूटर के जरिए भी हमारा ये प्रोग्राम को आप सुन सकते हैं। चले प्रोग्राम में तुलसी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक के आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है और गाना का बोल है सलामत

मुंशी कुमार, अरिजीत सिंह और अमाल मलिक की आवाज में ये गाना आज की प्रोग्राम में पेश की गई सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सुन रहे हैं। चले प्रोग्राम में अगली बार एक और काफी खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। उदित नारायण और पूर्णिमा की आवाज में ये गाना प्रोग्राम में आप सुनते ही रहना।

रेडियो SBS की जरिए खास गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले प्रोग्राम में गाना जो अगली बार पेश होगा आप सभी सुनने वालों की सेवा में सोनू निगम एंड सुनिधि चौहान की आवाज में।

0: uur reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टर्डम में।
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टर्डम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड।
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए।
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

पद्मश्री मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश की गई फिल्म का नाम था आरती। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना आज की प्रोग्राम में जो पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चले फिल्म हम किसी से कम नहीं उसी फिल्म का एक गाना पेश किया जा रहा है मोहम्मद रफी और सुषमा सरस्ता की आवाज में।

फिल्म का नाम हम किसी से कम नहीं, उसी फिल्म का गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और प्रोग्राम को जरूर सुनते ही रहना, हर एक को खबर कीजिए रेडियो SBS के बारे में।

खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में अब की बार आशा भोसले एंड मोहम्मद रफी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

मोहम्मद रफी और आशा जी की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों स्टूडियो का टेलीफोन नंबर है 032-62-66-11 महेंद्र कपूर प्रोग्राम में।

एस के जरिए। गाना बस्ती इश्क़ के महेंद्र कपूर के आवाज में गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। चलिए प्रोग्राम में किशोर एन लता जी की आवाज में ये गाना पेश किया जा रहा है।

0: रेडियो SBS के जरिए वही गाने पेश किया जा रहा है जो आप सुनना चाहेंगे, जो आप पसंद करते हैं। मुकेश और लता जी की आवाज में ये खूबसूरत सा गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। आसरो में थे गाना आप सभी ने सुना और काफी पसंद किया है। एडो फिल्म पत्थर के सनम, उसी फिल्म का गीत बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी सुनने वालों की सेवा में। संगीत भरी स्टेशन रेडियो SBS का प्रोग्राम पेश किया जा रहा है और वो भी शहर यूत्रेख से। तो चले प्रोग्राम में अब की बार गाना जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में पेश किया जा रहा है रेडियो SBS के जरिए, हम आपको ले चलते हैं एक और काफी खूबसूरत गाना की ओर जो आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है और वो भी लता मंगेशकर, लता जी की आवाज में एक और खूबसूरत गाना बस प्रोग्राम में, एडो फिल्म नाइट इन लंदन।
1: Hits, waar jij van houdt. Dit is Radio SBS.

मंगेशकर की आवाज में ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई। फिल्म का नाम था नाइट इन लंदन। उसी फिल्म का गीत अभी आपने सुना जो आज के प्रोग्राम में पेश की गई। आप सभी सुनने वालों की सेवा में चले प्रोग्राम में आशा भोसले एन एड दे बर्बन यानी कि राहुल देव बर्बन की आवाज में गाना पेश किया जा रहा है। The Nightingale of Asia, Asha Bhosle और Hrithik Burman, Rahul Dev Burman की आवाज में एक गाना पेश किया जा रहा है, पिया तू अब तो आजा।

रेडियो SBS के जरिए गाना बस प्रोग्राम में पेश की गई आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में आशा भोसले और एर डे बर्डमन की आवाज में। चलिए प्रोग्राम में फिल्म जिद्दी, उसी फिल्म का एक गाना बस प्रोग्राम में पेश किया जा रहा है आप सभी और सभी सुनने वालों की सेवा में। सुनने वालों, आपको खबर किया जा रहा है हर एक काम काज के लिए। रेडियो SBS का टेलीफोन नंबर है 0325656560। इसी तार के नंबर पर, टेलीफोन नंबर पर हमेशा आप तार कर सकते हैं। हम सभी 24 घंटे आप सभी के लिए बराबर बार होते हैं हर एक कामों काज के लिए, जब भी आप इन्फॉर्मेशन लेना चाहेंगे। तो चलिए प्रोग्राम में हम आपको ले चलते हैं मोहम्मद रफी और आशा जी की ओर, फिल्म का नाम जिद्दी।

सुन वालों, हमारा आज का प्रोग्राम बस यहीं से खत्म समाप्त होने पर आ गए हैं। हमारा आज का प्रोग्राम जो है सुनने के लिए लाख लाख शुक्रिया, धन्यवाद। आसरा उम्मीद है प्रोग्राम सुनकर और काफी पसंद किया है। बैठा आपका खिदमत गुजार रबीन। हर एक इन्फॉर्मेशन के लिए, इन्फो के लिए टेलीफोन नंबर है 0325656566। बस आप सभी सुनने वालों से हम फिर मिलेंगे।

हेलो नमस्ते और आदाब, मैं हूँ आपकी आरजे अंशलि क्रमलाल जो आपका तहे दिल से स्वागत करती है प्रोग्राम गीतों के लहर में। हेलो allemaal, dit is uw आरजे अंशलि क्रमलाल die u van harte welkom heet in het programma गीतों के लहर। Wilt u reageren, kan het altijd, surf maar naar de website www.radiosbs.nl of bel naar de studio met 032-62-66-11. Voor alle andere info kunt u altijd bellen met 030-265-6560. Dan gaan we naar het eerste liedje van vandaag. En dat is...

0: Churakje du mera, guria cheli. Deze keer is dit liedje gezongen door Benny De Jaal en Mol Malik en Anu Malik. En kwam uit de film Hangama 2. Uit de film Ghail komt dan Pyarte moet zeker tiho, don't say no. Gezongen door Shabir Kumar.
1: Mijn tumse pyar nahi karti. Kripya aap rasta denge?
2: Please.
1: Thank you.
3: Varsha ji, keh do ki tum mujhse pyar karti ho.
1: तुम्हें कुछ भी हो जाए मैं तुमसे प्यार नहीं करती। अब पता चलेगा बच्चू कौन हूँ मैं।
3: मालिका शरारती है। वो तो ऐसे मजाक करती है, बहुत प्यार करती है मुझसे।

सुना है तेरे दिल पे मेरा कहीं ना कहीं नाम लिखा है। देसी केर खसों दो जुबेन नौटियाल आउट द फिल्म सनक। हाँ वादा फैदर मैं शैलेंद्र सिंह मैं आउट द फिल्म जमाने को दिखाना है। होगा तुमसे प्यारा कौन।

सपनों का राजा कोई दिल में था मेरे समाया, आज मुझे मिल गया है, यही है यही है यही है मेरा प्यार. Dit prachtig liedje is gezongen door Shailendra Singh en Sulakshana Pandit en kwam uit de film Chalte Chalte. Gezongen door Jubin Nautiyal en Pritam komt het volgend liedje via Radio SBS in het programma Geeton Kileher. Uit de film Tarap komt Tu Mera Ho Gaya Hai.

मैंने सोचा ना हो इतना प्यार करो. दिस प्रachtig liedje is gezongen door Shreya Ghoshal en kwam uit de film The Body. En हमने सुना है इस volgend liedje via Radio SBS uit de film मेरे यार की शादी है, gezongen door Udit Narayan, Alka Yachnik, Sudesh Bhosle en Jasbinder Nerula. Is dit liedje in het programma गीतों के लहर.

गुरु नालो इश्क मिठा इस द फिल्म एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा एन गजोंग दोर लता मंगेशकर कम टू द फिल्म आरजू अजीर उठकर अब कहाँ जाइएगा जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: Is aashiqui ka asar chhod jaunga.
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडाम में.
3: मैं अनुराधा पोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडाम में.
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई.
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: शो आपके लिए ला रहे हैं रागा इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड.
2: क्या आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर लीजिए.
4: रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर ऑफ

हम दोनों दो प्रेमी दुनिया छोड़ चले, जीवन की सारी रस्में हम तोड़ चले। इस अर्ध फिल्म अजनबी खजानदार आरडी बर्मन लता मंगेशकर एन किशोर कुमार वासुदेव लीचे फिया रेडियो SBS इन इत प्रोग्रामा गीतों के लहर। एन अर्ध फिल्म बागी 3 कॉम्स खजानदार शान एन रोचाक तुझे रब माना है।

ये लड़की बड़े ड्रामे बाज है, बस और द फिल्म सूरज पे मंगल भारी है, एंड और द फिल्म लव मैरिज कम्स हो जाऊंगा तो गीता दत्त करीब आओ ना।

सुनने वालों, रेडियो SBS का प्रोग्राम आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। यहाँ से प्रोग्राम में मृत्यु समाचार, दुख की खबर आप सभी सुनने वालों की सेवा में बस पेश किया जा रहा है। कोई चल दिया है अकेला, कोई रह गया है अकेला, ऐ दुनिया के मालिक तूने कौन सा खेल खेला। प्रोग्राम में मृत्यु समाचार सुनने के लिए ध्यान दीजिए अर्थात गौर फरमाइए। हाउटन शहर से समस्त दुखित परिवार महादेव मिसिर और समस्त लड़कन बहुत दुख के साथ ये सार्वजनिक सूचना दे रहे है। डोंडडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में पत्नी एल्फी के पति, तीन बेटा और एक बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा के पिता, तीन पतु और एक दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम के ससुर, एक पोतीन और दो पोता जेडा, जेनाइडो, रोशन और नेलन के आजाम। हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदर दत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए है, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनी स्त्रात नंबर 3 के निवासी था। आरती के आखिरी दर्शन करने के लिए आप हर एक को मौका दिया जा रहा है। वोसदाग 19 अगस्त सावंस फन 6 टोट 7 उटवाट सेंट्रम डालवैक फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में। आरती फ्रेडाग 21 अगस्त स्मिदाग फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक इन द ग्रोते औला फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट शहर में दा करिया किया जाए। सुन वालों से निवेदन और गुजारिश किया जा रहा है खबर को और जान पहचान वालों तक पहुंचा देने के लिए। रेडियो SBS इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में शोक सहानी भूटी पेश कर रहे हैं और ऊपर वाला से यही प्रार्थना किया जा रहा है इन तमाम दुखित परिवारों को इस दुख की दिनों में पूरा पूरा शक्ति देने के लिए। रेडियो SBS आप लोगों के दुख में पूरा और पूरा शामिल है। इसी तरह से रेडियो SBS के जरिए अभी आपने सुना प्रोग्राम मृत्यु समाचार, दुख की खबर जो पेश की गई है। सुनने वालों, यहाँ से रेडियो SBS का प्रोग्राम में एक शोक समाचार सुनने के लिए आप ध्यान दीजिए। बृहस्पतिवार 13 तारीख अगस्त डोंडडाग 13 अगस्त 72 साल 72 साल की आयु में हाउटन स्केख कैंप नंबर 5 का रहने वाला चंदरदत्त महादेव मिसिर के मृत्यु हो गए हैं, जो सुरिनाम पारामारिबो अबेनिस्त्रात नंबर 3 के निवासी था। अर्थी फ्राइडाग 21 अगस्त स्मिदाग्स फना 4 क्रेमेटोरियम डालवैक ग्रोते औला में फ्लोरिडा ड्रेव नंबर 7 उतरेख ओवरवेक्ट में दा करिया किया जाएगा। पत्नी एल्फी अपने पति, तीन बेटा और एक बेटी किशन, विकास, अमरेश और करिश्मा अपने पिता, तीन पतु और एक दामाद मिरांडा, लिंसी, सकीता और राम अपने ससुर, एक पोटीन और दो पोता जेडा, जेनाइरो, रोशन और नेलन अपने आजा को बहुत याद करते हुए और भगवान से उनके आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए ये गाना बस पेश कर रहे हैं।

Brehesbediwaar 13 tarich August, donderdag 13 augustus. Behetterzaal 72, zaal Kiajume. Houten, Schechkamp, nummer 5, Karehnevala. Chandardat Mahadev Misirke, Mrityu, Hugeyehe. Jo Suriname, Paramaribo, Abenistraat, nummer 10, Kenivasita. Arte, vrijdag 21 augustus, smiddags vanaf 4 uur, Crematorium Daalwijk, Grote Aula me, Florida Dreef, nummer 7, Utrecht, Overvecht me, Da Kriya Kia Jaigam. Patni, Elfi, Apni Pati, Tien Beta, Aurek Beti, Kishan, Vikas, Amres, Aur Karishma, Apni Pitam, Tien Patu, Aur Ek Damat, Miranda, Lindsay, Sakita, Aur Ram, Apni Sasur, Ek Potin, Aur Do Pota, Jada, Janairo, Roshan, Aur Nailan, Apni Aja, Ko Bahut Yad Karte Hue, Aur Bhagwan Se Unke, Atma Ki Shanti Ke Liye Prarthna Karte Hue, ये गाना बस प्रोग्राम में पेश की गए हैं। इसी तरह से रेडियो SBS की सरिये बस प्रोग्राम में एक मृत्यु समाचार और एक शोक समाचार अभी आपने सुना जो प्रोग्राम में पेश

रेडियो बेस के जरिए से आपने सुना शान और साधना सरगम की आवाज में कुछ ना कहो का टाइटल सॉन्ग, और अब आप सुनिए फिल्म रामलीला से अरिजीत सिंह की आवाज में लाल इश्क की मलहा।

कभी दिल के करीब तुम्हें मेरे नसीब यूं लाएंगे सोचा न था। बेहतरीन गाना आपने सुना संदेश सौंडलिया की आवाज में और साथ ही साथ साधना सरगम की आवाज में भी फिल्म सोचा न था से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है फिल्म हैरी मेट सेजल से।

कसम निकाह से आपने सुना सलमा आगा की आवाज में, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में रेडियो SBS के जरिए से आप सुनिए। खुशियां और गम सहती हैं, फिर भी ये चुप रहती है, अब तक किसी ने न जाना जिंदगी क्या कहती है।

फिल्म गुड न्यूज से आपने सुना बी प्राक की आवाज में माना दिल गाने के बोल थे, और अब आप सुनिए शमशाद बेगम की आवाज में कभी यार कभी पार लगा तीरे नजर।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। आपने सुना मन्ना दे की आवाज़ में बेहतरीन गाना फिल्म सीमा से, और अब आप सुनिए आतिफ असलम की आवाज़ में। गाने के बोल है तेरा हुआ और फिल्म का नाम है लव यात्री।

लो मैं हरी पिया हुई तेरी जीत रे। गीता दत्त की आवाज में आपने सुना ये बेहतरीन गाना फिल्म आर पार से। ये है प्रोग्राम गीतों के लहर रेडियो SBS के जरिए से। अगला गाना प्रोग्राम गीतों के लहर में है हम दिल दे चुके सनम फिल्म से। गाने के बोल है निमोड़ा निमोड़ा कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में। आप सुनिए ये बेहतरीन गाना।

0: En nu reclame, nieuws en het weerbericht op Radio SBS.
1: इस तरह आशिकी का असर छोड़ जाऊंगा।
2: मैं कुमार सानू और मैं आ रहा हूँ आपके शहर एम्स्टरडम में।
3: मैं अनुराधा कोरवाल आ रही हूँ एम्स्टरडम में।
1: राह में उनसे मुलाकात हो गई।
2: 6th of September, unforgettable 90s.
3: के लिए ला रहे हैं रागा
2: इवेंट्स फ्रॉम हॉलैंड। आप अपना टिकट जल्दी से बुक कर
4: लीजिए। रागा इवेंट्स प्राउडली प्रेजेंट्स अनफॉरगेटेबल 90s लाइव इन कॉन्सर्ट द टाइगर।

रोने दे आज हमको, तू आंखें सुजाने दे, बाहों में ले ले और खुद को भीग जाने दे। है जो सीने में कैद दरिया वो छूट जाएगा, है इतना दर्द कि तेरा दामन

0: अधूरी सांस थी, धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: मेरे हाथ में तेरा हाथ है इस uit de film फना एंड uit de film रूही आफ्सा इस het volgende liedje via Radio SBS किस्तों।